आवासीय किसान राष्ट्र इत्यादि के लिए हमने इसे लिस्ट और पकड़ी हुई स्टैंडर्ड

जैसे आइए एक हाथ दशरथ आए एक हाथ एक हाथ पंचो एक आई ये जैनी भाई देखा था ना कुछ दिन पानी आगे।

हिसाब से सौ कोट पैसा जरूर किया है बिना चुके हैं जो की यह ऐसा था कि जल रास्ता यहाँ सिटी पर का रास्ता नहीं है बल्ला के रूप में बंद नहीं होती है तो फिर बंद का लेकिन उन्होंने कष्ट साथ में

सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल

0: सिगर सरकारी मस्जिद पाँच राजपुता महान भटके सोझे उत्तर
1: हजुर आफ्नो कृषि खेती गरेर पुस्तामा लिन चाहती पटियाका पाँच परिवार पशुपतिनाथ सुप्राजमा इन्डियन इटालियन धान सरकारी पर चाइजो इन्डियन हिटर कम्बाइन मिल राइस मिल चारा मेसिन हार्भेस्टर साफ पटर लगायत पशु पक्षी दाना बनाना प्लेट मेसिन होइनाका साथसँग खेती किसानी गर्दा सबै समान उपलब्धता कसैका विग्रह सबै कृषिका मेसिन विशेष रूपमा जारी
0: ९८२४२६ ९६४८
1: ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८ ९६४८

छो आखिर पुरुष ने लक्ष्य पर्वत के साथ आओ दाँतरी पदर किसान चौकी हटिए सीधा पुल के तरह बात

0: தெரிவித்துள்ளனர். ஐரோப்பிய அணி தானும் வசித்தார் பாரமாக்கள் வெற்றிக்கிறார்கள் காட்டி சாம்சரி பிரச்சனைகள் சத்தீஸ்கர் பிளாஸ்டிக் போட்டியிலிருந்து ஜன்கொண்ட பொருள் சமைச்சி பேசுகின்றனர்.
1: राष्ट्रीय समाचार संगा हमारा संदेश का समय उड़ाएगा करता हमारा संदेश और यहाँ से पहला मुख्य मुख्य संदेश भी खेरा राष्ट्रीय नगर पालिका वार्ड नंबर 8 मार्च उड़ाना संकलित रहा साथ लेकर अख्तियार दुर्पयोग अनुसंधान आयोग संघीय सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित भ्रष्टाचार उजवरी सबसे ख्याल और जारी लगा प्रमुख हमार संदेश कल बिहार 7 बजे नेपाली भाषा हमार संदेश लिखने बाटी तब समग्र समाचार कक्ष भाषा पुस्तकिया पर प्राथमिक संक्रिया गौरीशंकर कैमरा मावी संग सक्रिय बिंदु मैं कुमार विदाई टू रेडियो सुनते अभी।

0: 找你谈这个第三个上班的
1: 一定会有，我也叫出来大家从军队啊等到这里来一起习惯了，我们上辈子来咱也不遵守了路上，但是我差不多是对我们上辈子发生了这还没结婚没戏的，我也忘了他们有些戏的路，但我也不知道戏的路，我们也不知道戏的路，我们是我们不知道戏的路，所以第四步是什么，有些可以来的不是不太一样的。
0: समाजसंघ का हेलो सांसद को बेटी को लाकर उन्हें बिहार साढ़े छह बजे को कार्यक्रम हेलो सांसद में प्रसारण होने जा रहा है। अध्यक्ष रुपये में समझ रहा है कि एक वस्त्र को उजुरी को संख्या चालीस हजार वर्णन करी उजुरी पाले को समय इसमें आधा उजुरी साढ़े छह बजे को पाले को साथ अपनों को ठेका ना दिए का समय इस तरह कार्य में अब नारंग की मोबाइल ऐप आ गई पूरा सुबह में पाले भरता सर इधर कांग्रेस की आगामी 15 मार्च में

0: संभव है कि महाभारत का संख्या में सुधारे स्वस्थता सुरक्षित परिवार रेडियो द्वारा सामाजिक बदलाई साथी
1: Thank you.